अभी आप सुन रहे थे बासी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाये सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले,

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, अभी आप सुन रहे थे झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डाजी, क्या नज़ारे।

झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है क्या नजारे, किशोड़ा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोड़ा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज़ में बुरे भी हम भले भी हम द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक 2 मिनट बाकी है 11 बजने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद में आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा भजन हम पेश करने वाले हैं और ये भजन हम पेश करते हैं सभी दुखी प्राणियों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे जिनके हृदय श्री राम बसे तुम और का नाम लियो ना लियो, और ये सुंदर सा भजन हमने पेश किए हैं सभी दुखी प्राणियों के लिए। किशोरदा आपको सुनाने वाला है आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है।

आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। अभी आप सुन रहे थे किशोर डाजी की आवाज़ में ज़िंदगी क्या है, यादों की बारात, जख्मों की बारात।

जिंदगी क्या है यादों की बारात, जख्मों की बारात। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों द टाइटल फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर, द माइटी मुकेश जी की आवाज में आप सुनेंगे।

आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम, फ्रॉम द मूवी माई लव।

वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। रहा कर डिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।

रहा गर्दी शो में हरदम मेरे इश्क का सितारा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दो बदन। वो कौन थी इसी फिल्म से हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है ये, चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुनने वाला कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स अभी हमने चलाए हैं आप सभी के वास्ते, तो चलिए कुछ लोकल सॉन्ग्स हम चलाने वाले हैं। शहीद वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे।

अभी आप सुन रहे थे शहीद वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे। नदीम खान इस बार प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, खिसा के फूल पे आती कभी बहार नहीं।

नदीम खान आपको सुनाने वाले थे खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों एक बहुत सुंदर सॉन्ग के साथ, तुम जब भी याद आओगे।

जब भी याद आओगे ये दिल भराएगा, भी आप सुन रहे थे उमर वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में। नबी यानी नदीम खान एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, कहाँ कहाँ पे ना जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते।

नदीम खान जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। सुनने वालों, आप सभी सुनने वालों के वास्ते मैं कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्ट सबसे बड़ा संपत्ति, मुस्कान सबसे बड़ी ताकत और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए वारिका रामसुकुल जी की आवाज़ में ये गीत हो जाए।

वालिका राम सुकुल जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। चलिए यहाँ से प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, नदीम खान आपकी आवाज यानी नदीम खान की आवाज में आप सुनेंगे कभी तो नजर मिलाओ।

मरवाही हुसैन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी की सेवा करने वाले हैं। सुनने वालों, वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सजन मोरे आ जा रहे।

अभी आप सुन रहे थे उड़ उड़ जाए निंदिया मोरी, वालिका राम सुकुल जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, गलिया से गलिया

गलियां से गलियां अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, संदीप बदलुची की आवाज़ में हम पेश करते हैं बुढ़वा का खोजे है चिकना खोजे है, और ये गीत हम पेश करते हैं शांति माताई जी के वास्ते जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं। तो शांति माताई आप ही के नाम हम पेश करते हैं।

यानी संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। देखो बुढ़वा दरुया पी के चिखना खोजे हैं, और ये गीत हमने पेश किए हैं शांति मताई जी के वास्ते, जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं। आनंद भजन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, गोरे गोरे गालों पे काला गुदनवा।

गोरे गालुक के गोदनवा जुलुम करना अभी आप सुन रहे थे आनंद भजन जी की आवाज में। जरा सा हम देखे तो दविंदर सिंह शिवनाथ जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, चलिए मिलकर सुनते हैं।

दविंदर सिंह शिवनाथ जी आपको सुनाने वाले थे शिवली ग्याव, जॉय शिवप्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आप सुनेंगे आपके आ जाने से।

अभी आप सुन रहे थे जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरज जी की आवाज़ में आपके आ जाने से इट्स विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। देवेंद्र सिंह सिवना जी की आवाज़ में आप सुनेंगे आजा गोरिया कहाँ कहाँ आजा, आप खुद सुन लीजिएगा।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice day and take care of yourself. Till next time.

सुनने वालों, एक गीत हम चलाने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और फिल्म का नाम है मर्यादा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जुबा पे दर्द भरी दासता चली आई।

अभी आप सुन रहे थे जुबा पिदर्ड भरी दास्ता चली आई, बाहर आने से पहले हिजा चली आई। द मुए यानी द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। भूले से मोहब्बत कर बैठा, ना दा था बेचारा, दिल ही तो है

भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से हम पेश करते हैं दो रंग दुनिया के और दो रास्ते।

The Mighty Mukesh Ji ki awaaz mein abhi aap sun rahe the the title from the movie दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको ना मिल सके ना या यानी वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे। फ्रॉम द मूवी इज्जत से हम पेश करते हैं सुनने वालों

क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं और दावत पे जाना है।
1: अभी तो बहुत वक्त है, नींद अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा।
0: बहुत दुख होता है, मैं नहीं अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक ही।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?

धीरे धीरे मचल ऐ दिल बेकरार, कोई आता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

मेरा साया साथ होगा, अभी आप सुन रहे थे तू जहाँ जहाँ चलेगा। जरा सा हम देखे तो चंद्रमुखी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

नैन का चैन चुरा कर ले गए, कर गई नींद हराम, चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे, सुनने वालों, महेंद्र कपूर जी और आशा जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं, इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में, आशा गीत जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं एक बार फिर से आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: आप सुन रहे थे दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने

मित्रों, जब मैं सूर्योदय या सूर्यास्त का जादू देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफर का मजा लें। जिंदगी के सफर का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन als ik de magie van zonsopgang of zonsondergang zie, besef ik dat geen opkomst permanent is en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief. Vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, aur doston, sabse bada gyan hai, sabse majboot hathiyar, dhairya hai aur sabse achhi nishchita vishwas hai aur sabse prabhavi dawa hansi ke mitron. हंसी है मित्रों, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मेंशन फॉर द ग्रोटस्ट रेकडोम इज वैसाइड, हेट स्टर्कस्ट वापन इज गदुल्द, द बेस्ट जेकरहाइट इज गलोफ, एन हेट मेस्ट एफेक्टिव मेडिसाइन इज लाखन, लाखन बेस्ट मेंशन। Dus blijf altijd lachen, hamesa, hanste rehena, hamesa, hanste rehena.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ एंड दी ओवर टेकिंग लीफन बेस्ट मैंसन एंड खासो दोर। साथियों, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बनो, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो रास्ता बनो, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो तारा बनो, तारा बनो, क्योंकि ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमैन्स वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दान एन पथ, अल्स ये गेन जोन कुन जैन वेस दान एन स्टर, वांट हैट इज नीट डोर ये ग्रोट दैट यू विन और फरलिस्ट, वेस द बेस्ट इन व्हाट यू ओग मैन एंड डू। लिफ मैन्स,

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिससे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंज जिल ओपनीमन वर्त ओंज जिल खजों वर्त ओंज खेस्ट कालम एन स्टेरक वत लेट तोत वेल विलंत हैत इन ओंज उमगेविंग एन verkrijgt ons lichaam immense kracht. Wat mooi is dit toch? Wat is dit toch mooi, lieve mensen? Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai, hum sabhi mein. प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए मित्रों, और ये हमारा नजरिया है जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है मित्रों, ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफमेंसन वे आलमाल हेवन एट फरमूक उन ओमजो वेलो रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन En het is onze houding die een van beide onderhoudt en voedt. Ye hamare mein kshamta hai mitron. To burai bhi hamare mein aur achhai bhi hai. To in dono mein se hum kya karna chahte hain? Kaun si lege hum? Kaun wala achha rahega mitron?

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैन तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हैट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन, लात हैट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो जिंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्थ मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विल इन स्टेलन मर हैथ लीफन वो पास एक्ट मकलक ऑन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल also ervoor kiezen om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosto, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, हम समय का इंतजार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्ट मैंसन द टेट वक्त नोइट ऑफ ओंस वारोम वक्त वे दन आल टेट ऑफ एट यूस्ट मोमेंट एर इस नोइट एन फर्केट मोमेंट ओम द यूस्ट थिंग एन टू डू एन एर इस नोइट एन गुड मोमेंट ओम द फर्केट द थिंग एन टू डू डेंक हियर इस ओवर ना बेस्ट मेंसन डेंक हियर इस ओवर ना Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik nae, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

0: मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैनसन ईमन फरखीफन इस मकलक मर ईमन वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस तकोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ऑपलोस्ट खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम क्रूथ ब्लेव पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग।
1: क्या सही है और क्या गलत है,

दिल के पास बस आप ही रहते हो। आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान वालों, दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ अभिका शेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम सत श्री अकाल राधे राधे नमस्कार जी। आप सब कैसे हो?

तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं और तुम्हारे पास हूँ सदा। सुनाए हमको ये दो मशहूर गाने वाले लता और मुकेश जी, बढ़ चलते सुनने के लिए।

अति सुंदर सदाबहार गीत आप सुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करता है। कहने को तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करता है।

किशोरदास से हम सुनते हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए पल दो पल, और ये फिल्म जंजीर से निकाला गया है।

ये वादा रहा जैसे आपने सुने, फिल्म का नाम है ये टाइटल सॉन्ग ये वादा रहा, और उनको सुना है आशा भोसले जी और किशोर दा मिलकर। किसी ने बहुत खूब से कहा है कि वच साइड साली ओस्टन एंड दैट इज अक्सी रियाक्सी कोटम वी खुद दूत खुद ओंतमुत। जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो है उसे ज़्यादा पाने की उसे ज़्यादा पाने के लिए रोते हैं, जो मिल जाता है उसे पाकर कभी ना संतुष्ट होता है। इंसान के फितरत ही कुछ ऐसा है जो कभी ना पूरी होते हैं।

हाँ, प्यार प्यार प्यार प्यार महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, और सुनने वालों आपसे ये जरूर कहूँगी कि कुछ तो चाहत रही होगी इस बूंदों की, इस बारिश के बूंदों को भी। कुछ तो चाहत रही होगी इस बारिश की बूंदों को भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद।

जिंदगी जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है, तो कोई थोड़े में ही खुश।

चेहरा है या चांद खिला, फिल्म सागर से निकाला गया, ऋषि कपूर और डिंपल का बात या इसमें जो काम की है, और किशोर दास जी की आवाज़ में हमने सुने फिल्म सागर से जो निकलती फैफन तख्त में पिक्चराइज किया गया है। चलो चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे, जो हमें ना समझे, हम भी उन्हें समझाना छोड़ देते हैं।

राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। एक बार फिर, हर बार फिर आपको स्वागत किया जाता है बहुत प्यार के साथ यहाँ से, जिस भजन प्रोग्राम में हम गोटा लगाते हैं और हर बार लगाते ही रहेंगे, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, ताकि हमारा दिन जो है वो ऊर्जावान रहे, पॉजिटिव रहे। दातु मैतन ब्रेड खलाख door het leven mag gaan en ook het uw dag mag beginnen. We hebben net Hanuman Chalisa kunnen luisteren en dan heb ik dit hierbij ook voor jullie Shiu Chalisa.

जी मेरे सुनने वालों, यहाँ से हनुमान चालीसा के बाद शिव चालीसा हमने मिलकर और श्रवण की है, तो उसके बाद आपके लिए गणेश मंत्र जी, और वो भी 108 बार। आप सिर्फ सुनने से आपका दिन जो भी है वो बढ़िया से शुरू हो जाएगा और आपको ऊर्जा मिल जाएगा। ऊर्जा माने की इनर्जी।

108 बार यहाँ से हमने श्रवण कर ली है श्री गणेश मंत्र। हाँ जी, पूरा 108 बार। उगता हुआ सूरज मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्त प्राणियों, मेरे उगता हुआ सूरज हम सभी के लिए बहुत खुश रहे, खुशहाली लाए हैं। फूलों की खुशबू, ये जो दिन है ये खुशबू हम सभी को मिले। गुड मॉर्निंग के साथ सुबह तुम्हारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में रोशनी आए। और इस बार आपके लिए है कुबेर मंत्र। हाँ, कुबेर मंत्र, कुबेर जी जो खजानती है, पैनिंग मेस्टर है हम सभी के लिए, जिसके खातिर हम सुबह उठते हैं और हाँ अपने नौकरी पे जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा का खजाना जो है वो कुबेर जी है, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं।

अति सुंदर जो हम यहाँ से कुबेर जी को भी अपने जीवन में शामिल कर दिया गया है, और कुबेर जी तंदुरुस्ती के साथ हमें भी कुबेर जी चाहिए खजांती। ऐश्वर्य वैभव हमारे जीवन में भी एक अंश है। आपके लिए इस बार शिव जी की स्तुति।

सुबह की धूप यादों का एहसास दिलाती है। जी हाँ मेरे सुनने वालों, की सुबह की धूप यादों की एहसास दिलाती है। हर खुशबू एक नया जादू चलाती है।

हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अवश्य अवश्य। सुबह सुबह सुबह सुबह सूरज का साथ हो मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य उगता है कितना अच्छा लगता है न, सुबह मिलता है देखने के लिए तो कितना खुश हो जाता है दिल। हाँ, कहते कि सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते पंछी की आवाज हो, क्या खूब है। और हाथ में कॉफी चाय और यादों में कोई खास हो जैसे आप मेरे दोस्तों। हाँ मेरे भक्त प्राणियों, उस सुबह की पहली याद तो आप है, इसलिए यहाँ से ये स्पेशल प्रोग्राम भक्ति में भक्ति भजन जो है इसमें हम गोटा लगाते हैं ऊर्जा पाने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए सिर्फ आपके लिए।

राम जी की स्तुति यहाँ से हमने भी श्रवण कर ली है, आपके लिए शामिल कर दिया है आप ही का भजन माला प्रोग्राम में। रात गुजरी मेरे दोस्त, रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, और दिल धड़का फिर आपके याद आई, और यहाँ से आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो हर रोज आप सुनते हैं, इस बार भी, आज भी और आने वाले कल में जो है, पल में जो है, आपके लिए जरूर हमेशा पेश होगा। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो द एन है, एख्त हेलमाल हेलमाल

हम सबके कल्याण, कितना अच्छा बात है। उठकर तो देखिए यहाँ मेरे प्रिय भक्तजनों के, उठकर देखिए सुबह का नजारा। ओहो, हवा है, ठंडी मौसम, वो प्यारी प्यारी मौसम। सो गया चांद, छुप गया हर एक तारा। स्वीकार कीजिए आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को।

हे सूर्य देवाय, हे सूर्य देव, दर्शन तेरा दर्शन। सूर्य देव के दर्शन करने से दिन कितने अच्छे होते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशियाँ आ जाता है। सुबह का उजाला लेकर आया है आपके जीवन में, हम सब के जीवन में खुशियाँ और प्यार। कि आपके होठों पर आप जागते हो तो कितना खुशियाँ आ जाता है, होठों पर हंसी, आंखों में खुशी।

हम सबके लिए खुशी। जो खुशी लेकर आए हैं, इस खुशी को और इस खुशी का कभी शाम ना होए। ये खुशी जो है हरदम हर वक्त जवान।

जी हाँ, सूर्य देव का नाम भी आदित्य है, ऐसे अन्य नाम भी है हमारे सूर्य देव के। रवि भी सूर्य देव का।

अति सुंदर ये अनूप जलोटा जी की आवाज़ में हम बहुत से सुंदर से इसके बातें जो हम इस शब्द जो इसमें प्रयोग की है अगर उसमें हम जो गौर किए होंगे तो आप तुरंत ही पता चले कि कितनी इसमें रस भरी और शब्द इसमें इस्तेमाल की है अनूप जलोटा जी, जो हम अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लगा वो जहाँ पे गाए कि दान देते समय वो राजा अपने निगाहें अपनी आंखें झुका लेते थे तो प्रजा कह सोचते रहते कि ये दान देता है और फिर निगाह से आंख में आंख नहीं मिलाते हैं। तो पूछा कि आप दान देते समय क्यों आप नज़र झुका लेते हैं, तो राजा ने बहुत खूबसूरत जवाब दी कि दान तो हम दे रहे पर ये मेरी नहीं है, देने वाला तो कोई और है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो आपको दान देते हैं। ये प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ अनूप जलोटा के बाद आपको हम एक बार फिर यहाँ से ले चलते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, सुनेंगे एक तारा बोले और वो तारा क्या बोले। तारा यानी कि एक स्नार, जैसे खितार में स्नार है सितार में स्नार है तो उसको तारा कहते हैं, और तारा भी आसमान पे जो चमकता है उसको भी तारा कहते हैं। बस यहाँ पे मतलब है कि एक तारा बोले कि एक स्नार बोले।

में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। आइटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं

एक तारा बोले और क्या बोले, वो भी बोले तुन तुन तुन। हाँ, अगर आपको पास एक तारा हो जाने के अंतरात snaar, daar kunt u ook even proberen en daar gaat u ook hetzelfde geluid horen, de toen, toen, toen. Mijn derde poortje was met Aurea Seham en Milkar Sunne Sunne Wallon.

परछाई की तरह हमेशा साथ चलता है, गम परछाई की तरह हमेशा साथ चलता है और खुशियाँ हवा की तरह यूं ही गुजर जाती है, खुशियाँ हवा की तरह यूं ही गुजर जाती है। जिंदगी की हर पल में, जिंदगी के हर पल में जीना सीख लो दोस्तों, जिंदगी के हर पल में जीना सीख ले मेरे दोस्त। ये उम्र रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है, कहानियाँ बनती है, कहानियाँ बनती रहती है हर किसी के यहाँ, कहानियाँ बनती रहती है हर किसी के यहाँ। जो सफल हो जाए, जो सफल हो जाए, बात उसी की कही जाती है।

महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसी संदेश को इस रचना में प्रस्तुत कर रहा हूं।

जो बांधने से बंध जाए, जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए, उसका नाम है बंधन। एक बार फिर, जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए, उसका नाम है बंधन। और जो अपने आप बंध जाए और जो अपने आप बंध जाए और जीवन भर ना टूटे, उसका नाम है संबंध। अनूप जो लता जी की आवाज में हमने सुने भगवत गीता के एक छोटा सा कहानी, जो इसमें बहुत लाभदायक है।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। आप सभी के लिए पार्टी तो यहाँ से आरंभ हो गया है और आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ,
2: I love you यार।
3: Love you too।

हाई हील थे नच्चे, हाँ हाँ हाई हील पे भी नाच सकते हैं, क्यों नहीं। हाई हील माने की होखा हाक पे। इस बार है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड।

0: दिल्ली वाले गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के ये जवानी दीवानी, ये जवानी है दीवानी, जरूर तो कुछ बात होगी ना उसमें।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।

करे आपके लिए इस टाइम टू एंजॉय एंड टाइम टू बी हैप्पी हैप्पी नॉट ऑलवेज टुडे बट एवरी डे बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी. U luistert naar Faun Hindustani Radio, mijn lieve luisteraars, en dit wordt allemaal een keertje heel anders voor u gepresenteerd, helemaal voor u.

यस यस यस यस यस यस अयो ओ मेरी मैना तू मानल मेरा कहना उषा मंजेशकर और मन्ना दे और फिल्म का नाम है प्यार किए जाए और प्यार करते करते हर पल बीते और ये गीत आपके लिए शकीरा की आवाज में

आय ना आला माजरा उस्ताद लक्ष्मण भाग्यलू जी ने सुना दी कि आला माजरा दोरो प्राणी कसाबा कोरो यहाँ पे आपके लिए पेश किया गया है। आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है मोक्षी पातू। हाँ मोक्षी पातू आप जानते हैं ना, और मोक्ष आले इसी सब चीज मैंग कर दे तो उसमें कितना स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए आज कुछ अलहिदा आपके लिए

रिमिक्स आपके लिए पेश किया गया है और ये शेकत बेबी शेकत फरमाए आपको रेमोंड रामनारायण और देवानंद जी आपको हम बता दें यस यस यस हाँ ये जरूर से इस वक्त के लिए देने सुनने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको फिर से यहाँ से एक बार हार्दिक से स्वागत किया जाता है आपका फाहोन द एनख एख्त फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। बी वेलकम हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट

उमर वागिद हुसैन के आवाज में पेश किया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको यही बताती हूँ और यह भी कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कोशिश करें जरूर से मुस्कुराते हुए ये पल जो है, ये दिन जो है, इसे बसर करें।

सभी को बहुत सारे बधाइयां पेश किया जाता है। कहते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं कि पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, ओ माय गॉड, अब वो पल आया भी तो सिर्फ एक पल के लिए। अब हर पल दुआ है उस पल के लिए। अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, काश फिर आ जाए वो पल एक पल के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि ये पल जो है, ये क्षण जो है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे जरूर से एक मोई वाला यानी कि एक अच्छा दिशा देना, जाके कल जाकर पल बीतने पर ये एक अच्छा यादगार हो जाए। इस बार हम सुनेंगे शहीद वागिद हुसैन

हाँ, शहीद वागित हुसैन के बाद आपके लिए मैं ला रही हूँ प्लेलिस्ट पे जो तैयार है नदीम खान जी की आवाज़ में। इस बार हम सुनेंगे, उससे पहले ये बता दे कि मार्क एरन स्ट्रालंद मोमेंट अन ऑनस्पानंद मोमेंट और ऑनस्पानंद ताखवान खनित वान एल खनित वान द क्लेने देंगन समाकन हैत लेवन ग्रोट्स। Neem de tijd vooral, vooral neem de tijd voor jezelf. Je bent belangrijk, ja, want als u er niet bent, dan kunt u wel zelf invullen. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor uzelf. Geniet, relax, met heel veel liefde.

Wassenaar, Wassenaar. Bij een schietpartij in Wassenaar zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht, meldt de politie. Mere dosto, समाचार के बाद आपके लिए यहाँ से हम जारी कर रहे हैं आप ही का चुने हुए गीत, मांगे हुए गीत। इस बार है फिर से आपके लिए है उमर वागित हुसैन, मैं किसे अपना कहूँ।

लता जी के गाए हुए गीत यहाँ हम सुने उमर वागिद हुसैन की आवाज़ में, और इस बार सुनेंगे कि काश कोई मेरा सहारा होता मुकेश जी के गाए।

नदीम खान जी की आवाज़ में कि हाँ मिले या ना मिले तो मैं यहाँ से ज़रूर कहूँगी मेरे दोस्तों कि आप ज़रूर से खुशहाल रहे, मैं मिलूँ या ना मिलूँ फिर भी आप रेडियो फोन पे चुन रहे तो यहाँ से आपको ज़रूर से अच्छे अच्छे दिल बहलाने वाले गीत ज़रूर से मिलेगा सुनने के लिए। सेफ ओवर 11:30 हो चला है।

नदीम खान जी के आवाज में यहाँ से हमने आज के प्रोग्राम में श्रवण कर ली है। जय श्री राम। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कोई अच्छा सा पद मिले। कि आपको, हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा पद दे दूँ आपको, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी राम जी कहते हैं, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज़्यादा लाभ मैं हूँ। भगवान श्री राम जी ने पूछा, वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रख कर कहा, प्रभु, जिससे आपको ये दो पद मिले हो वो एक पद क्यों लेना चाहेगा। श्री राम जी ने हनुमान जी के बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रेम से गले लगा लिया।

उमर वागित हुसैन, उमर वागित हुसैन की आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है। एक सोचने के बात है, जरा आप मेरे साथ सोचे और सुने क्या मैं कहने जा रही हूँ। ये वेरक्त आठ उर ओम फिर उर तलेफन, ये वेरक सेस दाखन ओम एन दाख तखनीतन, ये वेरक आठ उर ओम ते एतन इन 15 मिनटन, ये वेरक आठ उर ओम 5 उर ते स्लापन, ये वेरक दे हेले यार, ये वेरक हत हेले यार गवोन om een week of 2 vakantie te nemen. Je werkt je hele leven om op ouderdom met pensioen te gaan en overweeg alleen je laatste adem. Uiteindelijk realiseer je je dat het leven niets anders is dan een parodie. Parodie van jezelf die beoefenen voor je eigen

जाते हैं एक दिन खुशी मनाने के लिए। 8 घंटा काम करते हैं 15 मिनट खाने के लिए। 5 घंटा सोते हैं 8 घंटा काम करने के लिए।

0: किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
1: इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता।
2: Luister naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
3: Digitaal Radio, internet fahunfm.nl.

जाकर हनुमान स्वामी बाबा महावीर हरि की मनोकामना पूर्ण करे और आपकी जाकर जीवन जो है स्वस्थ सफल रहे। धर्म के पालन कैसे सनातन धर्मी हो और जो भी धर्म तो अच्छा होता है, जबकि धर्म जो है साथियों वो कोई एक धर्म नहीं सिखाता, कोई एक मजहब भी नहीं सिखाता एक गलत रास्ते पे चलने के, या हर एक धर्म मजहब है जो इसी तरह से हमारी सनातन धर्म के पालन जो हम करते हैं। तो यूं ही आपसे ये संदेश आपको देता हूँ और जाको अगर चाहते हो जिंदगी में और कुछ लेकर जाना तो सही राह पे चलो, और हमारी धर्म यही सिखाते हैं कि अहिंसा परम धर्म, हमारे साथियों यही बतलाते हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में जितना संसार में लोग जो है हम एक परिवार है, यही सनातन धर्म के सिद्धांत है दोस्तों और संदेश है आपके लिए। और आज का दिन 3:43 और एन हो चला है शाम रोली मोहन 2 और 3 के दरमियान में, और अभी तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ। बोलने में कुछ टूटियाँ हो जाए, गलती हो जाए, कोई जुबान से ऐसा कोई सब निकल जाए जो आपको अच्छा नहीं, माफ़ कर देना दोस्तों, इंसान हूँ हमारे साथियों, इसी लिए ये मैं कहना चाहता हूँ। आज जानते हूँ आने वाले दिनों में कल जो है वेका की और फिनाले होने जा रहा है ना, वेका की फिनाले जो होने को जा रहा है अर्घ्यतीनिये और साथ में किसे स्पाइन से होगा ना खेल, तो वही क्या हम चाहते हैं, क्योंकि हम सोइत अमेरिका से आए हैं ना।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: U luistert naar Hindustani Radio,
2: Radio Fama.
3: Digitaal radio, internet, fama.nl.
4: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
5: मतलब ये लोगों के ये पांच लक्षण। पहला, मतलब ये लोग हमेशा दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं, जब अपना मौका आता है तो कंजूस हो जाते हैं। दूसरा, मतलबी लोग हमेशा आपको तभी याद करते हैं जब उनको अपना काम होता है। तीसरा, मतलबी लोग काम निकल जाने के बाद कभी आपको याद नहीं करते और ना ही कभी आपका हाल पूछते हैं। चौथा, मतलबी लोग हर बात में पहले अपना फायदा और नुकसान देखते हैं। पांचवा, मतलबी लोग कभी भी आपकी परेशानी के समय में आपका साथ नहीं देते और सबसे पहले आपको छोड़

हम आपके लिए जरूर चाहते हैं हर एक को शुभ वीकेंड मोई बेर खरीद फन। हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

Fahorn Station, de music station. Ja, ja, साथियों, बार बार एक ही बार फाइन वीकेंड है, ब्लेव फॉरल नहीं फरकीता अफ़ग़ानिस्तान अब यू सेंडर यू फ़ावरिट सेंडर फ़ाहोन हिंदुस्तानी रेडियो.

वाह वाह कलाकार। अच्छा है दोस्तों साथियों, और वीकेंड क्या वीकेंड है ना, दोपहर के प्रोग्राम में शनिवार के, और लाइव आप सुन रहे हो

साथियों टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना, पलकों के भीगने के हिसाब क्या रखना। बस इसलिए मुस्कुरा देते हैं हम अपने दुख से किसी को उदास, हमारे मित्रों क्या रखना।

तो हमारे मित्रों, साथियों, दोस्तों, शुभ शुभ शुभ वीकेंड है और आप जानते हो इन दिनों जो है रथ यात्रा भी निकल रहा है प्रभु शिव चेतन जी और ये जो है संसार हरे रामा हरे कृष्ण की उनके तरफ से हर एक को जाकर जो है प्रभु जगन्नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें।

0: तो हमारे साथियों यहाँ पर है श्री पूज पंडित और जो है हमारी यंग फैन को इस रात के मंदिर भ्राता रजेश और जाकर उनकी भाई संजय भगवंती, इन दोनों भ्राता ये मंदिर को चलाता है। इस वक्त जो है लाइफ कुछ पल के लिए बहुत दूर से भारत भूमि से, मातृभूमि जहाँ से हमारे बाप दादा आए थे और जगन्नाथपुरी में उपस्थित थे, पर ये दोनों हाथ जोड़ के शीश दबाए के आपको साथ जैसे प्रणाम। और आप जरा से हमारी सुनने वालों को यहाँ रेडियो पर बतलाई के और जो कुछ कहना चाहते हो जरा से कुछ कह दो, एक सेकंड।
1: जी भाई श्याम जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपने समय बनाकर और एक बार फिर हमें फोन किए। तो इस समय मैं तो भारत देश में हूँ, वृंदावन शहर में हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का लीला हुआ था। तो अभी हम यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, अभी एक दो मिनट बाद हमारा वो गाइड यहाँ हमें आकर और ले जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर कल हम प्रेमानंद जी की सुबह, प्रेमानंद जी जो हमें कथा श्रवण कराते हैं, उनका मंदिर दर्शन होगा, उससे स्वयं हम जाकर मिलेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप इस समय यहाँ हमें तार की, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते थे कि कब हम वृंदावन में पहुंचेंगे। इससे पहले काफी बार आ चुके हैं, लगभग 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन वृंदावन में आना और वृंदावन में दर्शन करना वो कुछ विशेषता होता है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होते तो हम यहाँ पहुँच नहीं पाते।
0: इतना सौभाग्य तो मैं भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ आने के लिए। इस वक्त इस घड़ी मैं वहीं रहना चाहता था आपके साथ, लेकिन मेरा बुलावा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करो, और वहाँ जो है प्रभु जो है जगन्नाथ, और इन दिनों रथ यात्रा चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो कह दो। पर ये हमारी धर्म वीर धर्म प्रेमी इस हॉलैंड देश के जो है
1: जो यात्रा चल रहा है अभी, तो अभी हम मुझे तो दर्शन नहीं हुआ भाई साहब जी, क्योंकि अभी मैं कुछ घंटे हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं कल तक तो अभी दिल्ली शहर में थे और अभी पहुंचा हूँ। तो इस समय मैं अपना गाइड कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो आएंगे तो आएंगे, अभी मैं उसका जान पा रहा। और शायद कल आपसे फिर बात होगा तो हम उसके बारे में आपसे बता सकेंगे, लेकिन यहाँ जोर तोर से तैयारियां हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक पंडित जी है महाराज जी, जो यहाँ इस होटल में भी कुछ कुछ तैयारियां कर रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है। अभी हम उससे बात नहीं किए, लेकिन मौसम तो यहाँ बहुत अच्छी है और वातावरण बहुत अच्छी है प्रभु, और बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमें ये दर्शन करने को हमें ये प्राप्ति होते है।
0: पर ये मैं अपने तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, यही परमपिता परमेश्वर भगवान से, कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हूँ कि आपके मनोकामना जाकर पूर्ण हो पाएगी। और हृदय से आपको लाख बार धन्यवाद कि आप दतु मैं तो वो ठाकुर स्थान
1: जी। और बहुत धन्यवाद, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम अब इस समय हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, और आपने फोन किया तो, और सभी रेडियो के सुनने वालों को भी एक शुभ नवरात्रि। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहा है और आपको पता होगा कि ये इस नवरात्रि ऐसे है कि ये जो आषाढ़ मास में जो चल रहा है, यह तो इसमें माता रानी विराजमान होते हैं, और माता रानी आते हैं एक नौका पे, और जो जो उस नौके पे बैठना चाहते हैं तो बैठो, और जो जिक्र पास जीवन में व्याधा दुख दर्द क्लेश है उस महारानी से इस समय पूछो, विनती प्रार्थना करो कि हमारा व्याधा निवारण करे, और हम आपके नौका में बैठेंगे और उन्हीं के अनुसार हम चले तो सबका मनोकामना पूरा होगा। यही में मुझे माता रानी से विनती है।
0: पर ये मैं फिर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और आने वाले दिनों में आपकी मनोकामना फिर से एक बार 1000 बार कहता हूँ कि आपकी मनोकामना जाकर, और जो है हम लोग के आदि शक्ति है आपके जो जाकर पूर्ण करे।
1: अच्छा भाई श्यामपुर जी धन्यवाद, हरे कृष्णा,
0: राधे राधे पंडित जी। यहाँ तक था श्री पूज्य पंडित जो है अखंड विद्वान भगवंत जो है रजस भगवंत से, और आप उनके आवाज कुछ घड़ी के लिए सुने भारत देश में भारत भूमि गए हैं, और अपनी ये रथ यात्रा में जो है इन दिनों बीत रहा है उनमें भाग लेने के लिए, और जो है हृदय से धन्यवाद हमारी दोस्तों भैया देते हुए पंडित जी के।

0: रहे थे और हमारी श्री पूज्य पंडित थे राजेश भगवान से, लेकिन जहाँ वो उपस्थित थे और सी है और विद्वान वहाँ पे उपस्थित थे, पंडित जी है, और जरा से एक ये अवसर पर ये घड़ी पल जिंदगी बीता तो नहीं आएगा, तो ये घड़ी ये पल हमारी सौभाग्य है कि चल के पंडित के आशीर्वाद लेते पढ़िए। आपको भी मेरे तरफ से लाइफ ऑफ द अर्थ सेंडिंग और मेरे तरफ से दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के पालोगी पंडित जी।
1: जय श्री राधे। हाँ बिहारी जी से गुहार कर दूंगा, टेंशन मत ले।
0: हाँ बोलते चलो, हम सुनते चलते हैं।
1: हाँ घर में आयु आरोग्य बनो रहे, बच्चन को सदबुद्धि मिले, वंश उन्नति होए, खूब खूब बिहारी जी आपके वंश को खूब आनंद में रखे।
2: तो पंडित जी ये हमारे होलैंड देश का ये रेडियो है।
1: नेपाल
2: तो नेदरलैंड्स में ये हमारे भाई श्याम पूरक जी वहाँ का अनाउंसर है, और वो उन्होंने अभी हमें फोन किए भाई वहाँ होलैंड देश में मैं हमारा अपना राधा कृष्ण मंदिर है, तो आज मैं प्रथम बार ये प्रथम रात्रि यहाँ पे आई हूँ और आपका दर्शन हो गया।
1: आप आई नहीं हो, आपका तो रानी का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, राधा रानी ने बुलाया है आपको।
2: राधा रानी देखो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं अपने मुखारविंद से हम सबको एक मिनट में कुछ सुना दे देश।
1: अभी अभी आप यहाँ मोबाइल को ऑन रखना, मैं अभी लीला बताऊंगा सर।
2: अच्छा
1: सारी लीला ही होगी अभी।
0: पंडित जी अपने परिचय दे देना।
1: हाँ तो मैं, मेरा नाम है सोना पंडित, मैं यहाँ का ब्राह्मण ब्रजवासी, मेरा 300 साल का पीढ़ी है इधर ब्रज में। हाँ जी मैं अपने यहाँ अपने वंश का सातवीं पीढ़ी हूँ ब्रज का, हम यहाँ के राज पुरोहित हैं, जो राजा लोग होते थे हम उनके राज पुरोहित हैं।
0: हाँ कहते चलो, हम सुन रहे हो मैं लाइफ, आप लाइफ हो रेडियो पे तो मैं खुप रहा हूँ, एक बात करते चलो।
1: ओके सर,
2: तो यहाँ पंडित जी अपने कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्षमा चाहता हूँ भाई श्याम पूरन जी, अभी यहाँ पे हो तो और कार्यक्रम वो यहाँ कथा हम सबको श्रवण कराने जा रहे हैं, तो धन्यवाद आपने ये मौका दिया और शुभ दिवस को। जय श्री राधे,
0: जय श्री राधे, राधे राधे हरे कृष्ण। और मैं आपको कैसे धन्यवाद के एक है फिर वर्ड फॉर के हम वो सब नहीं मिलता है कि किस सब में मैं आपको धन्यवाद दूं। फिर भी पंडित जी और भगवान एक ही बात फिर से कहता हूँ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो।
2: हरे कृष्ण
0: राधे राधे पंडित जी। तो यहाँ तक हमारे साथियों आप सुनिए ये श्री पूज्य पंडित एकदम भारत देश से और जो इन दिनों गए हैं यानफांग कोचरात श्री कृष्ण मंदिर जो है वो मंदिर को ये परिवार जो है परिवार भगवंत और उनकी भ्राता यहाँ पे भी हमारी रेडियो फाउन में अनुसर है भैया राजेश जी, जैसे आपको मालूम है ये तो संजय जी, ये तो राजेश भैया भारत देश में भारत भूमि में और इन दिनों जो है और जाकर बहुत ये दिन जो है तारीख ये समय जो है जबकि रथ यात्रा निकल रहा है हमारी भारत भूमि में और हमारे साथियों जाकर जो है श्री प्रभु जगन्नाथ हर एक की वैसे जो है जाकर पूर्ण करें।

साथियों, ये रथ यात्रा के अवसर पर जाकर जगन्नाथ भगवान जो है मनोकामना पूर्ण करे। प्रभु शिव चेतन जी धर्मपति समस्त परिवार, बेटी दामाद बाल बच्चे जितने हैं, नाती पोता जितने सब के तरफ से, परिवार की तरफ से जाकर

प्रभु शिव चेतन परिवार की तरफ से जाकर प्रभु जगन्नाथ जो है रथ यात्रा के अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं।

पर्व रथ यात्रा, ये पर्व जो है भगवान हरे की कल्याण करे। भक्ति भजन करते रहो। जगन्नाथ आपको देख रहा है, जानते हो आपने परिवार। यह चीतन जो है शिव कीर्तन धर्मपति और समस्त परिवार की तरफ से बधाइयां शुभकामनाएं। ये जो है रथ यात्रा का उचित पर साथियों

ये पर्व के अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे। रथ यात्रा के अवसर पर परिवार जो है शिव चेतन प्रभु धर्मपत्नी और समस्त परिवार की तरफ से आपको बधाइयां शुभकामनाएं।

0: प्रभु जगन्नाथ हरि की मनोकामना पूर्ण करे। Vandaag zaterdag साथियों 18 तारीख 18 जुली 2026 और ये प्रोग्राम है, खास भजन, खास दिन है, रथ यात्रा के अवसर पर परिवार जो है हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे कहते हैं, हरे कृष्ण
1: जगन्नाथ
0: हरि बोलो, प्रभु शिव चेतन समस्त परिवार की तरफ से
1: जगन्नाथ
0: आपको बधाइयां शुभकामनाएं।

हमारे साथ हो, जैसे आपको मालूम है शनिवार का दिन है, सुबह वीकलिक्स सप्ताहवार प्रोग्राम। अभी कई बार मैंने आपसे कह चुका है, लोग जो तार किए उन लोगों को दंखवेल है इसराल ऊपर एंकलेसिकल में है बोर्ड मनेर बेस्ट मैन से फाइव ऊपर ट्वेई सात राख 18 जुली 2026 और शनिवार है हमारी दोस्तों। तो यही बात है, 2:05 व्यतीत हो चला है और वो वक्त अब जो है अब धीरे धीरे विलंब तो होने जा रहा है। श्रीमान राजकुमार रौली मोहन कुछ घड़ी के अंदर में हमारे साथियों और जाकर अपनी समाचार जो देता है यहाँ।

Ja, hamari beste luisteraars en saathiyon, aur shanivar hai vandaag, aur shanivar ka matlab hai aur do bajke vyatit ho chala hai, 6 minute is waqt hai, aur sunam se har ek saptah हमेशा अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं अपना कीमती समय निकाल कर आकर सुनाम के अनुपूर्णमात से और जो हो रहा है सुनाम में अपनी विचारधारा और देते हैं जहां पे फाहून के माध्यम से नहीं दिया है तो इसी कारण जो है आपको जानना चाहिए जो आप नहीं जानते जान सकते हो तो ये मीडिया के मुताबिक यानी कि जो है यह द स्क्राइफ इन द पेर्स यह द स्प्रीक इन द पेर्स एंड यह द फिशियल पेर्स क्रांत रेडियो एंड टेलीविजन और इसी तरह से यहाँ तो है स्प्रेक इन द पेर्स यहाँ और आपको बतलाएंगे बतला रहा है से इन्फॉर्मेशन दे रहा है श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जो सदस्य है यानी कि बिस्कैरम हेयर भी है ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ बॉयज के तो आज शनिवार का दिन

0: तो हमारी प्रिय मित्रों फाहुन रेडियो पे आप चुने हैं, आप ही की स्टेशन जनता के वाजे और कार्यक्रम फाहुन की और आप सुन रहे हो। मेरा मोहन वाते कोई नोक वेल्ड फ्राग है। Hallo.
1: Ja,
0: meneer Mohan. Dit wil ik niet uit. Het gaat over de voetballen gebeuren Argentinië, Spanje 1 en 2. Oorlog. Van

धीरे धीरे दोपहर से अब जा रहे हैं हम शाम की ओर ना, भैया देव के और तरफ से दिनों के तरफ से आप

तो जरा से मैं आपको ये बतला दूं ना, आज शनिवार है और शनिवार के और दोपहर गया, जैसे मैंने कहा शाम हो रहा है धीरे धीरे, तब की रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है ना। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता है, हाँ अपना कहने से कोई अपना नहीं होता है, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। यकीन करते हो हमारी साथियों दोस्त

0: पहली बात, बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में सीधा देखो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि जिस इंसान की नजरें मजबूत होती हैं, दुनिया उसका कॉन्फिडेंस तोड़ ही नहीं पाती। दूसरी बात, भीड़ में या मुसीबत के वक्त कभी खुद को टूटा हुआ मत दिखाओ। याद रखना, दुनिया हमेशा वहीं चोट करती है जहां तुम्हें पहले से कमजोर देखती है। तीसरी बात, बिना पूछे अपनी राय मत दो, क्योंकि सच गलत निकला तो मजाक उड़ाया जाएगा और सच सही निकला तो तालियां किसी और को मिलेंगी। चौथी बात, अपना अगला कदम किसी को मत बताओ। सच्चे खिलाड़ी और नेता दोनों तब तक चुप रहते हैं जब तक उनका रिजल्ट सबको हैरान न कर दे। पांचवी बात, हर सवाल का तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुक कर सोचो फिर बोलो, क्योंकि सोचा समझा जवाब ही इंसान को पछतावे से बचाता है।
1: ये जिंदगी है और जिंदगी में मेरी गलती बस यही थी कि मैंने हर किसी को कुछ ज्यादा जरूरी समझा। हमारे दोस्तों, कुछ दिन खामोश होकर देखा, लोग सच में भूल जो जाते हैं ना हमारे साथियों,

और ये बताता भी चलूं आपसे कि हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने है कि ठीक से रोया भी यह नहीं जाता।

यकीन मानो जो संस्कार आपको दिए हैं और पिता मिला है जो आपको, और उसी तरह से समाज में आप बर्ताव करेंगे, उसी तरह से जिएंगे। तो जानते रहना अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार से साथ वही बर्ताव करो जो आप चाहते हो, जैसे आपके बर्ताव हो ना हमारे साथियों। ये जो है ये आप इसे मानते हो, जानते हो, यकीन करते हो, आलोचना मत करना करो। और जो है ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानो

बारे में जो है आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा मनोरथ जो जाकर यही है, उत्सव जो हम मना रहे हैं इन दिनों और जाकर आप जानते रहना कि हौसला और बढ़ाना है हमारे साथियों, खुशी संतुष्ट प्रेरणा जो मैं कहता हूँ, ये अनुभव विमुचित आन फूल यही जो मैं आपसे कहता हूँ। एक दिस बार फोर बेल जैसे मैं आपसे कह दूँ कि उदाहरण है ना, हार्दिक से शुभकामनाएं आपको, और कोई तुलना नहीं करते हैं, गुंजाइश भी नहीं है इसमें। और जाने की जय सोच रहा हूं मैं कि जो है इस वक्त इस पल आप जो हो जो रामायण वेद को ध्यान किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा हो गया होगा कि इतना ज्ञानी हमारा ही बीच में उपस्थित है। दोस्तों संकल्प से सिद्धि हो जाएगा, संकल्प ले लो, ये बात आपसे कहता हूँ। आज ये प्रोग्राम है इस पल, कल नहीं रहेंगे, अब है, अब जानते हैं कब क्यों कैसे ये जिंदगी भी खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता दोस्तों। वर्तमान मेहबर है, भविष्य कोई नहीं जानता है, जो बीत गया वो तो बीत गया, खिसकी नहीं रेस हो गया है ना। और इस बार

कि मैं ये जो रिश्ता है हमारी दोनों की ने? अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ, रिश्ते की गहराई आजमाना चाहता हूँ, जो बारिश के बूंदों में मेरी आंसू पहचान ले, एक साथी एक दोस्त जैसा, ऐसा जो मैं यूं ही आपसे कह देता हूँ कि बनाना भी चाहता हूँ ना।

उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की, हाँ ये जिंदगी की शाम हो जाए।

या दिन हुआ है तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी तो बात होगी। इतनी प्यार से दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। यही कि हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो।

यह बेस्ट मैन से और हमारे साथियों कैसा लगा ये जो है, कहता हूँ मैं गीत गजल के साथ जो है शेर शायरी, जैसे गुलाब के फूल में खुशबू उसी तरह से शेर शायरी मुझे भी पसंद है, आपके सुनाता चलता हूँ। कि हर कोई अगर निभाने वाले हो जाए या बन जाए तो तजुर्बा सीख कैसे मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ठोकर लगना भी जरूरी होता है हमारे साथियों।

यही जो होते हैं फूलों में गुलाब का फूल और संगीत में गीत में जो जाकर गजल ही होते हैं। साफ है दिल मेरा कह रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, फिर भी लगाए इल्जाम सह रहा हूँ ना। ना भूख लगती है ना ही लगती है प्यास, बारिश है अगर तू तो हवा बनकर साथ तेरे बह रहा हूँ ना। अधूरी है जिंदगी बिना तेरे, इसलिए तो साथ तेरे रह रहा हूँ। हमारी साथियों फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

ये जो है बादशाहों के बादशाह साथ तो शुरू बादशाह पदमा श्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में और आप ये श्रवण के हमारे साथियों और ये हमने चलाया यूं ही पसंद है हमारी कुलेखा जो है सहयोगी बीबी साहिबा रहीम बख्स उन्हीं के नाम से। मैं यूं ही अपना ही बात कहता हूँ, बातचीत होता ही रहता है, प्रोग्राम आपके नाम चलाते हैं, अपनी इज्जत को कुछ इस तरह से बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी और कभी सर झुका लिया, आपसे नाराजगी को कभी लंबे चलने ही ना दिया, कभी वो हुआ और कभी वो हंस पड़े और कभी हम मुस्कुरा दिया। रूठ कर बैठे रहने से बड़ा रूठ कर बैठे रहने से भला घर कहाँ चलेता है ना। कभी उन्हें खुद को अपनी गुदगुदा दिया और कभी मैंने मना लिया खाने पीने की कमी कभी होने ना दिया। हाँ, खाने पीने का कमी कभी होने ना दिया, कभी गरम खा लिया तो कभी बासी से काम चला लिया। मियाँ हुआ बीबी, पति हो या पत्नी ने, मियाँ बीबी दोनों एक बराबर है। कभी खुद राबा बन गया ना, हाँ कभी खुद राजा बन गया और कभी उन्हें बॉस बना दिया। तो यही वातर बैदुन आल टेट।

करते रहना, तू वही तो है ना, तू वही है ना जिसने पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल समझकर, हाँ समझकर। छोड़ गया

यह हमारे साथियों समझे ना, जो बात दिल में है उसे बोलने की और हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखना चाहिए ना, रखो।

ऐसा लगा कि भैया बतला सकते हैं। जिंदगी नहीं रुलाती है हमारे साथियों, जिंदगी नहीं रुलाती है, रुलाती वो लोग हैं जिन्हें हम, हाँ जिन्हें हम जिंदगी समझ लेते हैं ना।

हमारे साथियों, और यही चून है आप ही पर और आप ही स्टेशन जनता के आवाज हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

ये कमाल हमारे भाई देवेंद्र सिंह की आप जो सुने हमारे साथियों, और ढोल मास्टर की का कहना है तेरी मोहब्बत की हिफाजत कुछ इस तरह से हमने की। जब देखा किसी ने प्यार से, हाँ, जब देखा किसी ने प्यार से तो नजरें झुका ली हमने।

देवास फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में, और इसमें से जो है इस बार मैं आपके नाम चलाने जो वाला हूँ तो है

0: दुबराज प्रसाद और सविता सविता सिंह हमारी साथी हो पाहुन के माध्यम से।
1: कैमरा

0: बिहारी।
1: और ये जो है रमेश चंद्र बिहारी की कमाल। या साथियों, रमेश चंद्र बिहारी

ये महान कलाकार मुकेश जी ने दर्द भरी नगमे, प्यार भरी नगमे, रुलाता हंसाता सब

आप साथ मिलकर जी रहे हैं। सिर्फ दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, है? न साथियों, ये हकीकत है, सही बात है भैया चार रघुनाथ, अकेल है। और यूं ही जो आप करेंगे वही मिलेगा, किसी ने कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाएगा। अच्छा गलत ज्ञान बुद्धि आपको है, हम सब के है, जो आप करेंगे मिलेगा। अकेले रहने के भी अपना ही अंदाज है ना, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के जाने का गम, यही मैं कहता हूं। और मुकेश जी आपको क्या सुनाना चाहते हैं इसी दरमियान?

भैया दिलीप बताओ ये मौसम और ऐसा संगीत दिलीप रमादीन जरा से मैं आपसे ये कहना भी चाहता हूं कि वक्त और रिश्तों की कीमत तब समझ आता है, वक्त और रिश्तों की कीमत तब समझ आता है जब दोनों हमारी साथियों जब दोनों हो जाते हैं ना,

0: सिंगा।
1: ये किस्मत के बात है, तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वही तो मिलेगा उसे। जस्ती नकम हमारे साथियों, वो रूठ गए मेरा अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरा अंदाज देखकर, बदल गए मेरी जज्बात देखकर, हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े, खुद ही रो पड़े हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। हमारी प्रिय साथियों, मित्रों, दोस्तों, जहां भी आप हो खुशहाल रहो और चूल रहना इसी रेडियो पर, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, तक लाइफ आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ, और जैसे जैसे प्रोग्राम रहता है हमारे साथियों सुनते ही रहना जरूर से, और ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो जाकर चून हो तो यूं ही और बताता चलो आपसे ना।
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een défilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07536 2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Oh, यही सोच रहा हूँ जिन अंदाज में ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। कोई गलतियाँ हो जाए माफ कर देना, इंसान हो जाती हूँ हमारी दोस्तों। और अपने अंदाज में यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा से ये मैं आपसे बतला दूं कि खामोशी का सिलसिला अब शुरू हो चला है। अल्फाजों ने इजाजत गंवाकर खामोशी का दामन पकड़ लिया है। लगा उसे कि आवाज उसकी दूर तक जाएगी। अब समझ आया कि खामोशी

या हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों, और अर्ज क्या है? अर्ज जो है कि तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों? कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों? कि तुम मेरी आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों? कि तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों? और यही अर्ज है मेरा कि

क्यों प्यार मोहब्बत लव इश्क ये सब क्या से क्या न करवा देते हैं ना। ये जो है प्यार और भरोसा कभी मत खोना, प्यार और भरोसा कभी मत खोना। प्यार हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं हो सकता। दोस्तों इस पे आप जो है क्या कहना है, कुछ कहना है? तारक नंबर 0 7 3 2 6 20 7 7 और

खुशद खूबसूरती इसे अंजाम यही होता है ना, और आप ही से कहते हैं। देखो जाकर आईने में जरा से कजरा।

कार अपने अपने जगह हर एक कोई है, हर कलाकार के तारीफ कहाँ तक करे और किन शब्दों में करे। दादा हेमंत कुमार की आवाज आप श्रवण किए। नसीब में जिंदगी भर तुम्हारा साथ हो या ना हो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, इस दिल में हमेशा सिर्फ तुम, हाँ तुम, हाँ यकीन मानो तुम रहोगे।

हाँ साथियों, कुमार सानू परमाश्री कुमार सानू साधना सरगम डुएट सॉन्ग है स्पेशल आप ही के नाम।

तो यूं ही आपसे बता दूं, ये बात जो है इस वक्त ये पल ये घड़ी जो है तेरा पता नहीं, पर मेरा दिल कभी तैयार नहीं होगा मुझे तेरे अलावा, मुझे तेरा अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। शब्दों है ना, एहसास दिलाना होगा कि एक तू ही है जो दिल में समा गया है, वरना कोशिश तो हजारों ने की। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम आप ही के नाम, हमारे साथ क्यों हमारे कार्यक्रम 07 62 63 20 आप ही की हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फाहुन रेडियो पे आप जो चुन हो उसे

हमारे साथियों ये तो है नगमा आप सुन रहे हो ये प्रोग्राम में ये कार्यक्रम में, फिर भी एक नंबर मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ काफी दिनों के उन दिनों के बाद जो कहता हूँ नेकिन सेस्टक के तो दत्त बस यूनिक अति यूनिक में से और एक व्यक्ति ये कलाकार जो है मारियो के हरी के नाम से वाकिफ याकिफ थे ये हमारे भैया और एक नंबर गुलामी के जंजीर लाइफ रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मार्गो मुबारक के हरी के जो दांते संगीत में जो भाग लेते हैं कलाकार जो है तो जानते होंगे जरूर और जो है श्रीमान जो है गुप्तार मार्गो मुबारक के हरी ना उनकी कमाल चल के सुनते हैं

0: सुभाष जी का गौरव से भरी अमर कहानी है। अरे गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़ डाला रे, गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़वा डाला रे।
1: यहाँ भारत की आजादी की बात हो रहा है, अभी सुनाम आजाद नहीं हुआ था जब ये

गंगा बहरा बना पेशावर और पठान बन जाता है। कुटुंब कबीला सब परिवार भारत माँ से नाता है। काबुल में अंजल खाता भक्त राम भी पाता है। रहमत खाना

0: कंतराकी मार्ग बुरके हरी भैया गुप्तार इतिहास रचा है ना
1: बारह दिन उस गंदी शराब में रह करके सुभाष जब कष्ट उठाता रहा पुलिस मंडले आकर के उनको दिन रात सताते रहा उत्तम चंद के गए मकान पर हाल उनको समझाते रहे ताले में दुख बंद पाते लेकिन पासपोर्ट बनवाता रहा यूरोप जाना ठहराते हैं और रह करके कष्ट उठाते हैं गुलामी के जंजीर सुभाष तोड़

लगा। 18 मार्च को पासपोर्ट लेकर के कूच ठहराने लगा। 20 मार्च को गया रूस, 28 को जर्मन जाने लगे और हिटलर से सब हाल सुनाने लगा। हिटलर भी प्रेम दिखाने लगा। आजादी फौजी वहां शिक्षा पाने लगे और पासपोर्ट दिखलाने लगे। गुलामी का दंड सभा से तो

मन में पहले पहल बनाई थी। ड्रेसडन नामक नगर वहां सेना टिकवाई थी, नेता के पदवी पाई, क्रांति की आग लगाई थी। हिटलर जब अपने नखरा दल एक लाइन में कर तैयार किया, कहे सुभाष सुन, 8 करोड़ का मैंने सर पर भार लिया। पर सुभाष ने कहा कि 40 करोड़ का आजाद करना हम धार लिए, और कामदेव को मार लिए, और वश के संसार लिए, गुलामी का जंजीर सुभाष से।

0: भारत की इतिहास के और जो देखा जाए तो भारत की और जंजीर टूटा जबकि देश जाकर स्वतंत्र हुआ उसी के बारे में, और ये जो हमारे भाई महान कलाकार गुलामी के जंजीर मार्ग मेर के हरि के नाम से जानते हैं ये कलाकार जो है आपको सुनाए, और ये इतिहास जो है गुलामी की जंजीर टूटने के बाद फोर द ऑनफंक नाम और ये गाया गया उन दिनों मुमकिन ऐसे नहीं था बहुत, और लोग जो अपना रिकॉर्डिंग किए हैं सुनना में तो खुशी की बात है, और आज इंटरनेट में रख दिया तो हम सब मिल के सुने ये मार्ग मेर के हरि की आवाज। नाम तो आप सुने होंगे ज़रूर लेकिन आवाज उनकी आज मैं आपको सुना है ना। आप एक फाहुन के माध्यम से
1: हम ना जाएबे ससुर घर में,
0: यही सुंदर सुंदर सुंदर पोपो फ्रॉम त्रिदत्त एंड टोबैगो साथियों रात के निवासी है, जहां जहां हमारी भारतीय लोग आए संस्कृति सभ्यता अपनी भाषा कोशिश की है, तो आज सब जिंदा है ना, खुशी की बात है।

के लिए मैं आपसे ये जरा से कह दूं ना, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी तुम्हारी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भुलाऊं मैं तुम्हें एक पल के लिए, तुम्हारी यादें भी, हाँ तुम्हारे यादें ही मेरे जीने की वजह जो जाकर बन गई है। साथियों, यूं ही सुनते रहना पावन के कार्यक्रम

साथियों यही तो होता है ना, प्यार करो तो यही मिलता है। ये पल भी ऐसा कि भुलाया ना जाए, याद तेरी आए पर किसको बताए ना जाए। प्यार तुझसे इतना कि तेरे सामने रोया ना जाए, पर दर्द इतना कि हंसा भी ना जाए। हाँ, और आगे में चलकर फिर भी दिल कहे तुझे भुलाया ना जाए।

Eekse Eek. Eekse Eek. Van Eekse Burker Eek. Ik heb elkaar gehoord tegen, hè. और यही इसीलिए कहते हैं, थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात है रख, जब कोई ना सामने तो ऊंचे अपनी आवाज रख। ये खुद गर्ज है, ये खुद गर्ज की दुनिया है, सबको सबको बस अपनी पड़ी है ना, तेरा कोई नहीं, कोई नहीं रखेगा, तू खुद अपना ख्याल रख। साथियों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, तेरी याद भी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तन्हा होने नहीं देती, तेरी याद भी मेरा कितना हमारी साथ क्यों कितना ख्याल जो करती है।

इसीलिए जरा से मैं आपसे कह दूं कि कोई शाम आती है तेरी याद लेकर, कोई शाम जाती है तेरी याद देकर। मुझे तो इंतजार है उस शाम का जो आए तुझे अपने साथ लेकर, भैया देवेंद्र सिंह शिवनाथ।

या या या या, किसी को दिल से चाहना बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना बुरा तो नहीं। गुना होगा जमाने की नजर में तो क्या हुआ, हाँ गुना होगा जमाने के लिए तो क्या हुआ। जमाने वाले भी इंसान है, ये खुदा तो नहीं है हमारे साथियों, यूं ही

पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात जो है नहीं समझती ना।

जया, ख्वाबों के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए ना। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी के और जाकर आखिरी में होते गए।

इसी दरमियान आपसे कहता चलूं कि जो है सपना सपना ख्वाब जो होते हैं, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है तो हकीकत बोली, बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही जो है सपना होता है। जगदीश सिंह जी,

लोग इसे चटनी कहते हैं। कैसा चटनी सोचते हो दोस्तों, बोलो आप कैसा चटनी। इसमें सब है, दवेंद्र सिंह, सविता सिंह, किसने कहा कैसे।

और फाहुन के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं हमारे साथियों, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों। मैं आपका सेवक श्याम पूरे नाम के साथ हूँ। और कभी कभी और कोई रहता है ना, जैसे कि देवेंद्र सिंह सिवनाथ जी भी साथ रहता है।

किस्म से कभी कभी होते हैं। हमारे भैया महान कलाकार दिग्विजय सिंह, कभी कभी मोती माला भोला सिंह ने।

वही मैं सोच रहा हूँ, कहाँ मेरे भाई दिलीप रामादीन। राजन द्वारका, सुरेन भगवान दीन और जोनिया।

राहु न्यूज रानी रेडियो के प्रोग्राम हमेशा 24 घंटे लगातार आपको सुनाते हैं वही नगमे और यही सोच करके आपको पसंद आता हुआ होगा।

क्योंकि ये वक्त ये पल है घड़ी की। क्या घड़ी है ये घड़ी? गुजर रहा तो नहीं आएगा, गया एक बार, गया तो गया,

वाह वाह, मैं भैया कलाकार, मैं कहता हूँ अगर यकीन न करो तो यूं ही आजमाओ कि एक से एक बढ़कर कलाकार आप भी कलाकार।

इसी अवसर पर हमारे भैया सुरेन भगवान दिन जो उनके इन लोगों के बधाई शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ तो हमारे भैया सुरेन क्या कह रहे हैं आप?

फिर से एक बार नाचो गाओ झूमो, नाचो गाओ झूमे, यही तो है संगीत जिंदगी, और आपस में कुछ काम आते रहे।

टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना भैया सुरेन, टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना, पलकों के भीगने को हिसाब क्या रखना। बस इसलिए मुस्कुरा देते हैं हम, हाँ बस इसलिए मुस्कुरा देते हैं हम अपने दुख से किसी को उदास क्या रखना, सोचते रहते हैं क्योंकि देवेंद्र सिंह।

फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: ये खास नंबर जो है पसंद किया है।
1: आसमान है चलती
0: सुपुत्र बेटा जसवीर पूरन
1: पर फिर क्यों मुझको लगता है।
0: हाँ जसवीर के पसंद है, उनकी फेवरेट सॉन्ग है हमारे साथियों।

वाह वाह कलाकार, प्रार्थक है ऑन स्टेरफ्लेक, नेट ए व्हील, एक्ट नेट ए व्हील, बेस्ट लाइसेंस संगीत में

अब इस पल में मैं आपसे क्या कहूँ, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

तू उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

याद रखता है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है।

इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारों से कहो टिमटिमाना छोड़ दे, अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। साथियों, ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

वाह रे वाह, बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात हो गई?

कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते न, आप ही से कहता हूँ कि तुझको अपनी रूह में उतार लूँ मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूँ मैं साथी।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, छूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहेब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू ही कहता हूं मैं, ऑन स्टार फ्लक है।

0: पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया, हंसने वालों को क्या पता, हंसने वालों को क्या पता रोने वाला जो है किस कदर रोया। तेरी तन्हाई का आलम वही जान सकता है, हाँ हाँ तेरी तन्हाई के आलम वही जान सकता है जिसने जिंदगी में किसी को पाने से पहले खो दिया। हमारे प्रिय साथियों फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप सुन रहे, मैं आपका सेवक श्याम पूरन भी आपके साथ जो दे रहा हूँ, यही सोचते हुए कि जिन अंदाज में ये कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको पसंद आता हुआ होगा। इसमें आपको कुछ परिवर्तन जो लगता है कि आप लाना है तो यू ही हमेशा आप बतला सकते हो हमारे प्रिय मित्रों।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो चल के सुनते हैं ये जो है खास करके एक नंबर, यही मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे जाने पहचाने कभी सुने होंगे। और ऐसे नंबर जो होता है जो आप सुनते हो तो लगता है कि पहले बार सुनते हैं ना, हमेशा जो मैं कहता हूँ जैसे ऑन सेट फुल मेलोडी है, तो इस तरह से ये जो है इसमें और एहसास शब्दों आप सुनो सुनेंगे गौर से ध्यान धर के। तो

कलाकारों और जो है ये प्रकृति कुदरत या भगवान जो मैं कहूँ जिस तरह से भी इन लोगों के मिलाए हैं और ये महान कलाकार जो बन के आज उभरे हैं और आज नगमा को प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों, ये जो है पवनदीप राजन और अरुणिता कंजीलाल इन दिनों के महान कलाकार हैं दोस्तों। मैं अपने दिल के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं दोस्तों, मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, दिल से हाँ दिल से जिसे भी चाहा वो मुझे मिला नहीं, चाहता तो वो भी फिर भी दिल से भी जिसे चाहा वो मुझे मिला नहीं, बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, वक्त क्या करता है, वक्त तो अपना अपना कार्य करता है, हर एक पल जो है। और अंधेरे में एक दीपक मिला, अंधेरे में एक दीपक मिला पर वो भी जला नहीं दोस्तों। आप ही बतलाइए क्या करना है, और इसी कारण ये नंबर जो है आप ही के लिए प्रस्तुत करता हूँ, चल के सुनते हैं और आप ही बतलाइए कैसा है।

तो आप ही के स्टेशन फाहुन आपके साथ है और आपके और कोशिश ही करते हैं ये मनोरंजन के लिए ना दोस्तों, खास करके खुश रहो और संगीत सुनते रहो फाहुन की हमारी रेडियो के नंबर टेलीफोन की जो है जहाँ पर आप तार करके और कुछ कह सकते हो Als u wil, mag u inbellen, agar aap chahe to. Doston, to aapke khwaish jo hai, aapke wens jo hai, aur agar aap ek nagma jo pasand karte ho, sunna chahte ho, to zarur hum avashya chala denge. Ye naseeb ka khel jo hota hai, bahut ajeeb hota hai, doston. Naseeb ke khel bhi ajeeb hote hai. दोस्तों यह तकदीर नसीब जो लिखा हुआ तो होता है, जो हमें चाहिए कर्म के अनुसार उसे तो मिलेगा, चाहे हम चाहे नहीं दोस्तों, इसमें से कोई और दो बात नहीं है, दो राय नहीं है. नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं. कौन चाहता है अपनों से दूर होना, हाँ दोस्तों कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं. दोस्तों क्या कहें हम इसके बारे में, मुझे कुछ कहना है आप जानते हो. और जुदाई क्या है, खुशी या गम, कौन चाहता है गम जुदाई में, ये प्यार मोहब्बत का खेल में दोस्तों. और जबकि तारीफ करते हम हुस्न की, हुस्न क्या होता है, वो आपकी खूबसूरती के बारे में. और जो है

सबके हुस्न की तारीफ। यहाँ आप सुने हमारी प्रिय दोस्तों और पाहुन के सुनने वालों ये प्रोग्राम में, और आज के ये जो है कुछ प्यार भेजे नगमे हम आपके लिए चला रहे हैं। प्यार तो हर एक कोई करता अपनी अपनी तरह से, आपने किए हो जाने हो, आप रिश्ता बनाना जानते हो, किसको क्या मिला आप भी जानते हो, खुशी मिला गम मिला, गम कब मिलता है और दर्द कब होता है, जब जुदाई होता है कि रिश्ता बना देते हैं लोग, और यही रिश्ता जो बनता है तो सोचते हैं कि हमेशा के लिए, और जो ये सोचकर ऐसा रिश्ता बनाते हैं तो दिल से बनाओ तो क्या होता है, दिल से रिश्ता जो बनता है तो क्या होता है, और दिमाग से रिश्ता जो बनता है तो क्या होता है, यही मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। क्या बात है कि रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते दोस्तों, दिल से एक रिश्ता बनाया जाए तो उसे तोड़ने से भी नहीं टूटते, और रिश्ते अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते दोस्तों। आप समझते हो प्यार जो करते हैं लोग उसे जाने हैं, आजमाइए ज़रूर, और यह अगर ऐसा कुछ आजमाए हो खास करके रिश्ते के बारे में तो यूँ ही आप भी बतला सकते हो, क्योंकि हमारी तार का नंबर जो है आपको मालूम है, और यूँ ही मैं आपसे बतलाता चलता हूँ जो है प्यारे सुनने वालों खास करके बस चलो इसरार। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है दोस्तों, जिंदगी जी रहे हैं हम ना, मैंने जिंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है, जिंदगी ने हंस कर कहा दुनिया में आसान चीजों की कदर नहीं करते दोस्तों, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करते हैं। और आप भी कुछ कहना चाहते हो तो अवश्य मुमकिन है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं आपको ये सुना दूं

जबकि आप ये नंबर को सुने सुरों की देवी लता जी, लता जी आवाज में आप सुने। और जब मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि कलाकार जो है कभी नहीं मरता है, इसी तरह से आज अभी उनकी आवाज हम सुन रहे हैं। और कभी ये अपने जुबान से नहीं कहना कि एक कलाकार उनकी नहीं है, है उनकी आवाज़ तो हम सुन रहे हैं। कि कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता, दोस्तों इंसान रंग कैसे, आप कैसे आप कह सकते हो कि इंसान रंग नहीं बदलता? ये मैं अपने प्रिय मित्र दोस्त से भैया जॉनी नोमर से पूछ रहा हूँ कि इंसान रंग नहीं बदलता। लोग कहते हैं गिरगिट रंग बदलते हैं, लेकिन लेकिन किसी से किसी के सामने सच बोल कर देखो एक नया ही रंग दिखाई देगा। दोस्तों ये सही बात गलत आप जानो तो पहचानो, और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो। भैया जॉनी तो है खास करके मेरे पास बैठे हैं अपने, और सर हिला रहा है उनकी इस बात से खास करके वो वाकिफ है। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, यह है बात कलाकार के बात आते जाते रहते हैं और ये नसीब के और पल में जिंदगी में जो होता है हम नहीं जानते हैं। देखो एक फिल्म एक बन रहा था, फिल्म जो कहते हैं हम सिनेमा में, और सिनेमा में देखते हैं थिएटर में जाकर देखते थे, तो एक फिल्म बन रहा था, बना फिल्म और उस फिल्म बनने से पहले एक प्रोग्रामा बनाया गया तो उसमें गीत यानी कि नगमे लाया जाता है और कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। तो गाना तो गाया गया और गाया खास करके जो है एक महान कलाकार जो है श्री मुकेश जी, और ख़ास करके जो है द मैन मुकेश जी के नाम आवाज़ उनकी जो है लाखों हजारों करोड़ों के दिल चुराने वाले, और द मैन विद द गोल्डन वॉइस जो है ख़ास करके, और मुकेश जी की आवाज़ भी इसी तरह से रहा और लोग जो है इनकी, और मुकेश जी जो है यहाँ से आपको सुनाएंगे ये खास नंबर जो है उन्हीं के गाया हुआ, और दूसर कोई मशहूर कर गया, और आज के दिन जो है वो नगमा चल के सुनते हैं, सुनाता हूँ मैं आपको। और ये जो है आज का दिन जो है और यही एक ही दम चल के सुनते हैं, आप ही बतलाइए है।

जरा से मैं आपसे बतला दूं कि ये नंबर जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं स्पेशल आपके लिए, और क्योंकि आपके ये हुस्न की तारीफ, आप सुंदर की बात करते हैं तो हुस्न की तारीफ है, और मुकेश जी अपने शब्दों में इसीलिए आपके लिए स्पेशल फॉर यू।

तो आप सुने, यकीन माने कि आवाज तो था, ये तो दूसरी आवाज खास करके था मुकेश जी की आवाज, और ये कलाकार अपने तरफ से खास करके अपने और आवाज में ये नंबर को कभी गाया था, तो साथ में जाकर आगे में चलकर दूसरा कोई जो है और जो आज मैंने प्रस्तुत किया गाया मशहूर हुआ वो नगमा, तो मैं यूं ही आपसे बतला रहा था। ये आपको एक खसीखंद मुयद्दख मैं कहता हूँ, और जो है इस बार एक नंबर मैं चलाना चाहता हूँ, ज़रूर चलाऊँगा। और अभी अभी हमारी एक फैन खास करके प्रोग्राम हमेशा सुनते ही रहती, बीबी साहबा उर्सी खुदा बख्श जो है प्रोग्राम सुन रही हैं, मैं उनके और जो तार करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, फहारत खास करके तहदी से शुक्रिया मुफरा उर्सी खुदा बख्श। और एक नंबर मैं आज के कार्यक्रम में जो है चलाना चाहता हूँ, आज के मौसम की तरह आप ही के नाम से चलाऊँगा ज़रूर से, क्योंकि आपने फ़ोन किया, वादा किया हूँ आपसे अभी भी, और वादा करके निभाना अच्छा बात नहीं ना, तो मेरा पसंद है आपकी पसंद ये नहीं, मुझे यही सोच रहा हूँ कि आपको ये नंबर जो भी यहाँ से मैं चलाने वाला हूँ आपको पसंद आएगा, और यहाँ स्पेशल फॉर ऑन्स इन एक्ट उर्सी खुदा बख्स के लिए उनके तरफ से आज को के दिन जो है शुभ हो, सही खंदाख उनकी कहना भी है, और मैं अपने तरफ से उनकी तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफरव उर्सी खुदा बख्स आशिबली फिर

फ्रंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्यारे भाइयों बहनों, जान पहचान वालों, दोस्तों, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। मैं हूं आपके सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम, सलाम सत श्री अकाल, राधे राधे, शाम से मिला दे, नमस्कार हो जी। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सुनने वालों, जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक लात या जाता है। और इसी के साथ साथ हमने एक सुंदर सा गीत आपके लिए चुन कर रखी हूँ, और वो है जो गाया गया है लता जी के मुखारबिन से, साथ दे रही है मोहम्मद रफ़ी जी।

बस होने लगे दिल में टिक टिक टिक, जरूर से होना चाहिए। हम जिंदा है इसलिए हमारे दिल टिक टिक टिक करते। लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। बता दें हम आपसे कि फिल्म का नाम है हम चोली। ये सुनिए जी, सांसे किसी का इंतजार नहीं करते। हमारे सांसे जो है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करते, बल्कि चलते रहते हैं या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए।

कोई हमसे ना हो जाए फिल्म आराधना से निकाला गया है किशोर दाजी की आवाज में। जी हाँ,

ये भी ज़रूर कहूँगी सुनने वालों की, ये कलयुग है जैसे हम आजकल सुनते हैं, ये कलयुग है साहब, ये कलयुग है। यहाँ इंसान किसी की मदद करने में, किसी की मदद करने में भी अपना फ़ायदा देखता है।

फिल्म प्रेम नगर, प्रेम नगर से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और हम देखे हैं निखति फिरन से फन तक ये पिक्चर आइस किया हुआ फिल्म है। किशोर दा और लता जी की आवाज़ में हमने यहाँ से मिलकर और सुने हैं अलीन कोमियो ऑफ द आर्थ, अलीन कोमियो ऑफ द आर्थ, अलीन कोमियो ऑफ द वेरल्ड, अलीन साल ये ओक वर्ट्रेकन op een dag, dat is zeer zeker. Laten we daarom extra van elkaar genieten, zolang dat van het leven mag. Aapka vichar, aapka vichar, badalte hai ye dunia. आपके विचार बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, आपके विचार जब बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है तो जीवन जो है वो भी बदल जाता है।

जी हाँ, कुछ कुछ तो कहता है रोमांटिक सॉन्ग आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेगा। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा।

सावन झूम के फिल्म का नाम है, टाइटल सॉन्ग जो निकाला गया है आया सावन झूम के देखने से इस तक की फिल्म है। रफी लाता जी की आवाज में यह सुने आया सावन झूम के, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। से आपको हम लेकर चलते हैं ये दिल और उनकी आंखें निगाहें।

जीवन गुजार आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखा क्या है एक दूसरे को नीचा दिखाना।

अरसा गीत आपके लिए चलाया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और हेमलता जी के आवाज़ में हमने यहाँ से मिलकर और श्रवण की है। कहते हैं कि जब अकल पर पर्दा है तो सबसे पहले समझने वाला ही, समझाने वाला ही बुरा लगता है। और सिर्फ संघर्ष में ही इंसान अकेला होता है, सफलता मिलने की बात

काहे पैसे पे इतना गरूर करे है। फिल्म लावारिस से ये सुंदर सा गीत यहाँ से मिलकर हमने सुने हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख तो बेचा नहीं जा सकते और सुख तो खरीदा नहीं जा सकते। और अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम का अपना है। और जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखते हैं और हुनर रखता है, जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखता और हुनर सीखता है, वो इंसान ही वही इंसान तो सुखी रहता है।

हाँ सुन सुन साहिबा सुन, लता जी की आवाज़ में हमने सुने फिल्म का नाम राम तेरी गंगा।

किसी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपसे प्रेम करता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहता है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख की उम्र बहुत कम होती है।

आशा भोसले जी से और किशोरदास जी की आवाज़ में हमने सुने कि कब के बिछड़े और कहाँ आके हम मिले, फिल्म का नाम लवारिस।

कहते हैं कि सीधा होना बहुत टेढ़ा काम है जनाब, सीधा होना बहुत टेढ़ा काम है। और फिर भी लाखों समस्याओं के बीच भी जो खूबसूरत और अनमोल है वो है जिंदगी।

है जीवन चक्र, यही है जीवन चक्र, देह दोनों रहे हैं, दोनों यानी कि ओल्ड एंड यंग, नवयुग और बुजुर्ग, यही है जीवन चक्र, देह तो दोनों रहे हैं, एक बीते हुए कल को और एक आने वाले कल को।

कई खड़े होंगे, कष्ट में डालने वाले लोग तो कई खड़े होंगे, पर वो साथ देने वाला परमात्मा से बड़े

और ये भी कहते हैं कि अपनापन अपनापन छलकते हैं, अपनापन छलके जिसकी बातों में, अपनापन छलके जिसकी बातों में, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में।

और ओ साधना मुखर्जी से हमने सुनी फिल्म का नाम जाबाज। उम्मीद बहुत तकलीफ देते हैं, उम्मीद बहुत तकलीफ देते हैं, पर ना जाने क्यों फिर भी उम्मीद रहती है।

हाँ जी, आपसे प्यार है, आपसे प्यार है। उदित नारायण अलका जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल जी के पहला पहला पिक्चर सपने में। वो सपने में वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरे प्यारे दोस्तों, कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। और कहते हैं कि प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। और रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। और आगे में, भूलो उनकी गलतियों को, भूलो उनको गलतियों को, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे,

अलका जी की आवाज में, अलका जी की आवाज में आपके प्यार में हम बनने और संवरने और निखरने लगे। फिल्म का नाम रास और इससे पहले का गीत आपने सुने कि दिल लगा लिया मैंने, अलका जी और उदित नारायण जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया दिल है तुम्हारा, फिल्म का नाम। सांसे सांसे किसी का इंतजार नहीं करते, सांसे यानी कि आदम, हम सांस जो ले रहे हैं, हम सांस जो ले रहे ये किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, पर इतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम तो सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। पर पूछ लिया करो क्या हाल है, थोड़ा सुकून दिल को मिलता है। क्या हाल है आपका मेरे दोस्त,

बार आपके लिए हमने चुनकर रखी हूँ फिल्म डर से की जानू तेरी नजर, उदित नारायण जी की आवाज में।

मेरी किरण फिल्म डर से ये सुंदर सा गीत उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से चला दिया गया है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। लंबा धागा यानी कि अलांगा तो अफखार, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखिए। धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखनी चाहिए।

के बाद एक समय के बाद सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करती है। और मेरे दोस्तों, सब कुछ जान कर भी अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। और कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। और ये एक सुंदर सा लाइन है माता पिता के ओर बच्चे के ओर कि माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है मेरे दोस्तों, वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तब जाकर एक इंसान सफल होता है।

0: इतने सुंदर बयान अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी। और सच कहा है, आपको पता है कि भीड़ में, तन्हाई में, रात के तन्हाई में बस आप ही याद आते हो।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

लाखों आवाजों में पहचाने वाली एक आवाज ये ही, जी हाँ, लता जी की आवाज, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता जी और उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, है ना? लेकिन जी हाँ, फिर लेकिन आ गया, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ, आप जरूर सुनते रहना, आपको हम यहाँ से जरूर बताएंगे वो कौन सा वार है। वो कौन सा वार है जो आता है और उसे यदि हम माने तो पूरा संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। जी मेरे सुनने वालों, उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार आबाद सलामत है तो सभी वार आबाद और सलामत है। इस परिवार के एकता में इतनी ताकत होती है, एक परिवार का एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए।

सही बात, अगर वो नहीं समझे तो हम क्या करें। और एक बात ये भी है कि अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, अच्छा लिखना शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए ना आए मेरे दोस्त।

करने हमें ही दिखलाता है, हमारे ही करने हमें ही दिखलाता है। जब समय का चक्र घूम कर आता है, हमारी जिंदगी की जो किताब है, हमारी जिंदगी की जो भी किताब है, वक्त के पास मेरे हर कर्मों का हिसाब है। फाउन रेडियो की डायरेक्ट से स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में ये सुंदर सा सबका मंगल होए भजन सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया।

कितने दर्द भरे बयान अनूप जोलाता जी की आवाज में यहाँ से आपने सुन ले हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें जरूर से यहाँ से हम आपके लिए ला रही हूँ। अब योग्य बातें ये है कि जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। और मेरे प्यारे सुनने वालों, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि ऐ दोस्त, गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे। दुनिया ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहां आपकी बात की कदर ना हो वहां चुप रहना ही बेहतर है।

कभी दोबारा नहीं खिलते। आप मेरे साथ जरा दिमाग भिड़ाओ कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते। मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्तों कि मिलते हैं लोग हजार, पर हजारों गलतियां माफ करने वाली माँ बाप नहीं मिलते।